दादा कहते हैं ऐसा आदमी जो पेट की रोटी पाने के लिए तुम्हारे साथ लगा रहे और उसे कोई गरज ना हो। मुजाहिद कहते हैं वो बेवकूफ आदमी जो रोटी तो चाहता है औरतों का तालिब नहीं। शाबी कहते हैं वो जो साहिब खाना का ताबे व दस नगर हो जिसकी इतनी हिम्मत न हो कि औरतों पर निगाह डाल सके। इब्न जैद कहते हैं वो जो किसी खानदान के साथ लगा रहे हत्ता के गोया के उस घर का फर्द बन गया हो, उसी घर में पला बड़ा हो, जो घर वाली औरतों पर निगाह न रखता हो न उसकी हिम्मत कर सकता हो, वो उनके साथ इसलिए लगा हुआ है कि उनसे उसकी खाने पीने की जरूरत पूरी होती। अबिताबेन गैर उलिल इरबती मिनर रिजाल, यानी अब ये रिजाल कौन से हैं? नामहरम। उनमें से ऐसे शख्स के सामने औरत आ सकती है कि जिनके अंदर ऐसे जज्बात नहीं। इससे क्या पता चलता है कि वो तमाम मर्द जो इनके अलावा हैं उनके सामने औरत अपनी जीनत नहीं खोल सकती या उसको नहीं खोलनी चाहिए। अब तिफल या छोटे बच्चे, तिफल कहते हैं लड़के को, बच्चे, अल्लज़ीना वो जो लम यज़हरू नहीं मुत्तले हुए नहीं जाहिर हुए, अला औरातिन निसा औरतों की छुपी बातों पर, औरात कहते हैं छुपी हुई बातें, छुपी हुई चीजें, पर्दे की बातें, औरतों के खास मामलात, ये भोले भाले बच्चे जिन्हें अभी औरतों के खास मसाइल का इल्म ना हो। और इसमें कौन से बच्चे मुराद हैं कि जो बालिग ना हो, जिनकी आवाज ना बदली हो, जिनके चेहरे पर कोई ऐसे असरात मर्दों वाले जाहिर ना हुए हो, ये जिनको औरतों की खुफिया बातें जो हैं, जिनको आप कह सकते हैं निस्वानी मसाइल, औरत और मर्द के जो फर्क हैं, उन बातों का कुछ बहुत इल्म ना हो। वला यद्रिबना बिअर्जुलिहिन्ना, और एक और चीज कि अपने पांव न मारे, यानी पांव मार कर न चले, अपनी चाल में जो जीनत है उसको भी छुपाएं। लियो अलमा के जान ली जाए मा युख्फी न मिन जीनत हिन्ना, जो छुपाती हैं अपनी जीनत में से, अपनी जो जीनत उन्होंने छुपाई हुई है। और ये कौन सी है? मुराद है जेवरात की झनकार, पायल जिसको बोलते हैं, पायल की झंकार। पांव इस अंदाज से न मारें कि जिससे छुपी हुई जीनत झलक पड़े। तो इससे क्या पता चलता है कि जीनत की हर किस्म, हाँ वो चाल में हो और पांव मारने में, और खुसूसन आप देखें कि पांव मारने यद्रिबना का लफ्ज आया ना, ना मारे, पांव मारने के लिए खास लफ्ज है, एक खास अंदाज होता है, एक खास एक्टिविटी है जिसमें कैटवॉक नहीं, सिर्फ कैटवॉक नहीं है। आप देखिए जरा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि पांव कहाँ मारे जाते हैं? डांस में सबसे ज्यादा पांव मारे जाते हैं, यानी मर्दों के सामने इस तरह की उछल कूद, मेरे ख्याल में कि ये तो मेरे वजाहत करने की चीज ही नहीं है। वला यद्रिबन बिअर्जुलिहिन्न, ऐसे टैप डांसिंग कहते हैं। वला यद्रिबन बिअर्जुलिहिन्न लियोलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्न, और आपको पता है कि डांसिंग में खासतौर पर जिस्म की नुमाइश मकसूद होती है ना, लियोलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्न, जिससे जिस्मानी जीनत जो है वो जाहिर हो जाए या जेवर की झंकार जाहिर हो, ऐसी चाल ना चले। लेकिन हमारे यहां क्या कहते हैं, ऐसी चाल ना चलूं कलेजा हिल जाए। इसका मतलब है कि चाल चलने में भी खराबियां होती हैं जो कलेजा हिलाने वाली है। मैं सोचती हूँ कि हमारे गानों में कितनी जुर्रत

मैं जिद करके मामू के घर रहने चली गई। अब चूंकि कोई बड़ा ना था, सब लोग तो डेथ पे गए हुए थे, लिहाजा पहले तो मेरा कजन फिल्में ले आया। वो देखने के बाद मेरी कजन ने रॉन्ग नंबर मिलाने शुरू किए, कई घंटे लोगों को तंग करती रही। इसी दौरान किसी लड़के का नंबर मिल गया, उन्होंने रात 12 बजे से बुलाया क्योंकि उस वक्त भाई सो जाता है कि हमने आपको देखना है। मैंने अपनी कजन को बहुत समझाया कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर उसने कुछ ऐसी तावीलें पेश की तो मेरे पास कोई जवाब न था। बहरहाल रात को 12 बजे मेरी कजन उठी, उसने मुझे भी जगाया, मैंने जाने से इनकार किया तो उसने कहा तुम एंट्रेंस पे खड़ी होना, मैं गेट पर जाकर जल्दी से देख कर आ जाऊंगी। ऐसा ही हुआ, मैं पोर्च में खड़ी थी कि पीछे से मेरा कजन आ गया। उसी वक्त एक गाड़ी रोड पर आकर रुकी। मेरे कजन ने इंतहाई गुस्से से अपनी बहन को आवाज दी, वो ना घबराई ना झिझकी। भाई ने जोर का थप्पड़ मारा कि इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, तो उसने बहुत चालाकी से कहा और मेरी तरफ इशारा करके कहा कि इसने किसी लड़के को बुलाया हुआ था और मुझे कहा तुम देख कर आओ। अब मैं इतने बड़े बहतान के लिए तैयार न थी। बहरहाल सुबह घर जाकर मैंने अलिफ से ये तक सारी बात अपनी वालदा को बताई। उन्होंने कहा कि भाई अब आपको न बताना बहुत बुरा होगा वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ खानदानी हसद की वजह से उन रिश्तेदारों ने मेरे बारे में मशहूर कर दिया कि ये रात को हमारे घर से किसी लड़के के साथ भागने लगी थी और मेरे बेटे ने इसको बचाया। खैर 13 साल की उम्र में मेरी अच्छी खासी बदनामी हो गई, हम सब घर वालों ने एक नाकर्दा गुनाह की सजा भुगती। मेरी वालदा खामोश रही, उन्होंने किसी के आगे कोई वजाहत पेश नहीं की, सिर्फ ये कहती कि सब अल्लाह जानता है, अल्लाह ही बदला लेगा। और वाकई ऐसा हुआ कि 3 साल बाद उन लोगों पर एक ऐसी मुश्किल आई कि जिसमें उनकी बदनामी हमसे ज्यादा हुई। ये लिखती है कि मैंने 3-4 वाकयात ऐसे देखे हैं जिनमें बहनोई ने अपनी साली के साथ गलत ताल्लुकात उस्तवार किए। सबसे इबरतनाक कहानी आपको बताती हूँ, मेरे दोस्त के चचा की बेटी के साथ ऐसे हुआ। उसके चचा की 3 बेटियां हैं, बड़ी बहन के 4 बच्चे हैं और दरम्यान वाली की मंगनी हुई हुई है। बहनोई ने पहले दरम्यान वाली को जाल में फांसने की कोशिश की लेकिन उसने अपने मंगेतर को बता दिया, बात खत्म हो गई क्योंकि मंगेतर ने उसके बहनोई को धमकियां दी। अब बहनोई ने छोटी साली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, वो 9th में थी। शुरू में से रोज स्कूल लाना ले जाना, वापसी पे आइसक्रीम खिलाना, उसके बर्थडे याद रखना, हर सीजन के लिए सूट लाना, इस तरह इस शख्स ने इस बच्ची को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। उसकी बीवी चूंकि बच्चों के साथ मसरूफ रहती है और उधर उसकी माँ के जहन में था कि ये छोटी है, वो लड़की अपनी बहन के घर बहुत ज्यादा वक्त गुजारने लगी। बहनोई ने उससे जिस्मानी ताल्लुक भी कायम कर लिया। 2-3 सालों में बेहयाई की ये इंतहा कि वो खुलेआम अपनी बीवी के सामने उसकी बहन को लेकर बेडरूम में चला जाता। उस लड़की की उम्र 17 साल है, अब तक वो लड़की 3 अबॉर्शन करा चुकी है। नाजुक और मासूम सी लड़की अब देखने में पूरी औरत लगती है, माँ को सब पता है, मगर किस्मत का फेर के अपनी बड़ी बेटी की दुश्मन हो गई। अपने दामाद को कहती है कि तुम बड़ी को तलाक देकर छोटी से शादी कर लो, लेकिन वो कहता है कि मेरे बच्चे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, और इस्लाम के बाकी अहकाम छोड़कर एक एक्सक्यूज अपने लिए ढूंढा हुआ है कि इस्लाम को 2 बहनों को एक घर में शादी की इजाजत नहीं। मैंने ये बातें इसलिए जरा खुले अल्फाज में लिखी हैं क्योंकि ज्यादातर लड़कियां बहनोई को भाई भाई कहकर बहुत फ्री होती हैं। बात पहले घटिया मजाक से शुरू होती है, फिर तीसरा तहाइफ मुख्तलिफ तरीकों से टच करना, जैसे सर पे थप्पड़ लगाना, चुटिया खींचना वगैरह। अगर इन बातों पर रोका टोका न जाए तो बात बहुत आगे तक चली जाती है। इसलिए अल्लाह ने जो हदूद एक औरत को उसकी इज्जत इस्मत की हिफाजत के लिए बताई है, जो भी औरत इन हदूद को तोड़ती है वो खुद नुकसान उठाती है। अगर बच्चियां ना समझ हो तो बड़ी बहनों और माओं को ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक हकीकत है कि यंग बच्चों को बिल्कुल ऑन देयर ओन ऑल अलोन नहीं छोड़ना चाहिए जब तक उनके दरमियान कोई समझदार खातून जो रिलायबल हो, काबिल एतमाद हो, वो मौजूद ना हो, क्योंकि बसा औकात शैतान ऐसी चीजें सुझाता है जिसमें खेल ही खेल में, तमाशे में, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट करते करते बड़ी मुश्किलात में इंसान फंस जाता है। बाज़ूकत हम बदगुमानी और नाराजगी खत्म करने के लिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हालांकि हमारा कसूर ना भी हो, सिर्फ अल्लाह की खातिर हो तो अगला बात ही ना सुने और बेरुखी करे तो क्या करें, खामोशी इख्तियार कर लें। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज ले आएंगे कि जब उसको खुद ही एहसास हो जाएगा। याद रखिये कि अगर कोई शख्स माफी मांगता है तो उसको माफ कर देना चाहिए, वरना एक हदीस में आता है कि वो शख्स क्यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौज़े कौसर पर पानी न पी सकेगा, उसको वहां आने से रोक दिया जाएगा, महरूम कर दिया जाएगा, अगर मुझको हदीस के अल्फाज सही याद है। इसी तरह क्यामत के दिन कुछ लोगों को पुकार कर कहा जाएगा कि इनको बख्श दिया गया, सिवाय उनके कि जो दुनिया में दूसरों को नहीं बख्शा करते थे। कभी भी जितनी मर्जी नाराजगी हो, अगर कोई शख्स बात आपको बताना चाहता है तो आप उसकी बात अगर लिख के देता तो पढ़ लें, पढ़े बगैर मत फाड़े, अगर कुछ कहता है तो सुन लें। और ये कि 3 दिन तक अगर गुस्सा रहता है तो अमूमन ये करना चाहिए कि 3 दिन तक

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39

0: जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए मिलकर मलक साहब का पैगाम सुनते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम जनाब राज साहब। राज साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं इंशाल्लाह अब तंदुरुस्त हो गया हूँ अल्लाह के फजल करम से, और बहुत जल्द मुलाकात होगी और इंशाल्लाह दोबारा हम नए से रौनक लगाएंगे और अपने मुस्लिम लीग के काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहता हूँ।
0: समाइन, मलक साहब ने कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन राजा गफूर अफजल को अपना पैगाम सेहत याब होने के बाद पहली दफा मीडिया पर
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। समय ये मिला जुला प्रोग्राम है। समाइन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर मोहतरम रहमतुल्ला बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, एक बार फिर हम आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी राज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज है हमारा।
1: बेग साहब, आप इतनी बड़ी जमात की, अपोजिशन की जमात के आप सदर हैं, लेकिन आपकी आवाज़ कमजोर हो जाती है जब आप माइक पे बोलते हैं।
2: यार मैं तो बहुत अच्छी तरह बोलता हूँ और अल्लाह के फजल करम से मेरी आवाज भी ठीक ठाक है, कोई कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। पता नहीं ये कोई रेडियो या फोन के सिस्टम में कोई खराबी हो सकती है।
1: बेग साहब चलें, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये भी आज कोरोना वायरस का प्रोग्राम है, तो आप कोरोना वायरस के बारे में क्या कहेंगे सामाइन को?
2: इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो जरा बड़ी उम्र के लोग हैं उनको चाहिए कि अपने घरों तक महदूद रहें और अपने बच्चों के जरिए सारी चीजें मंगवाएं बाहर से और एहतियात करें, और डेली जो है ना वो आप नहाए सुबह जो है ना जरूर। हर आदमी जो है डेनमार्क रहने वाला पाकिस्तानी, उसको चाहिए साबुन से अच्छी तरह नहाए और अपने बाल वगैरह सारा बदन साफ करे, और दिन में 2-3 मरतबा खाने से पहले खाने के बाद आप अब साबुन से हाथ धोया करें अच्छी तरह, और ख्याल रखा करें आप कि आपके बच्चे जो है वो भी हाथ धो के खाना खाए। और दूसरा, और जिसको ये तफीफ हो के शक हो के उनको ये सिम्टम है तो उनको चाहिए कि फौरन से पहले वो जो यहाँ के जो दिए हुए नंबर है उन पे फोन करें और टाइम ले, और टाइम लेके अपने आप को चेक करवाए।
1: बेग साहब अच्छी बात है। बेग साहब, एक तो आपके जो लीडर हैं या आपके स्कैंडिनेविया के चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक सदीक साहब, आपको मुबारक हो। आज उनका मैसेज जो है हमने अदारा आपकी आवाज़ पर हमें भेजा था उन्होंने ईद के हवाले से, तो आज मैसेज जो उनकी वॉइस जो है हमने अपने सामान के साथ शेयर की है, आप क्या कहेंगे?
2: जी ये बहुत अच्छा कदम है, अल्लाह ताला उनको तो अच्छी सेहत अता फरमाया, हमें तो बहुत खुशी है। इंशाल्लाह चंद रोज के बाद हम मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मलिक मोहम्मद सदीक साहब वो सदारत करेंगे इजलास की, और इंशाल्लाह ताला सारे लोग देखेंगे वो सेहतमंद होके दोबारा अपनी जमात के साथ खड़े हैं।
1: बेग साहब, 14 अगस्त बहुत करीब आ चुका है, 14 अगस्त के हवाले से आपका कोई प्रोग्राम है?
2: जी हमारा हर साल 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है और इस साल भी है, और इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।
1: चले इस वक्त मतलब 14 अगस्त का आपका प्रोग्राम है?
2: जी जी बिल्कुल, हर साल होता है भाई जान।
1: बेग साहब, इस वक्त कोई कम्युनिटी को कोई आप मैसेज देना चाहें?
2: कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो आपका रेडियो जो है उनको गाइड कर रहा है, इसमें और भी कोई लोग हैं जो कम्युनिटी में, आप चेयरमैन है कम्युनिटी के, आपसे बेहतर मैसेज कौन दे सकता है आवाम को।
1: चले बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: जी राज साहब वेलकम, जब भी चाहे मैं हाजिर हूँ आपकी जो जब भी चाहे।
1: बहुत शुक्रिया बेग साहब। समान ये थे रहमतुल्ला बेग साहब जो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے صبح اعلان کیا تھا کہ آج مختلف ممالک سے ہمارے مہمان ہوں گے، آپ کے اپنے جانے بجانے کامران جو کہ پاک عمل کلچر سوسائٹی سویڈن مالمو کے صدر ہیں اور نوجوان سیاستدان بھی ہیں، اور ایز اے مجسٹریٹ بھی جو ہے وہ اپنا سویڈن میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل کام بھی وہ اپنا کرتے رہتے ہیں، اور پیشے کے لحاظ سے وہ انجینئر ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مالمو کی فضاؤں سے موجود ہیں۔ کامران، ایک بار پھر ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بہت شکریہ آپ کا رہ صاحب، مجھے اپرچونیٹی تھی، بہت مہربانی آپ کی، اور میری طرف سے آپ کے سارے سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔
1: خیر مبارک۔ کامران، سب سے پہلے آج بھی یہ کرونا وائرس کا پروگرام ہے، سب سے پہلے ہم بات کرونا وائرس ہی کریں گے کہ اب کرونا وائرس کا جو ہے وہ کرونے کا کیا حال ہے سویڈن کرونے کا؟
2: آپ کو پتا ہی ہے جیسے کہ سویڈن نے سٹیٹسٹک کے جو ابھی ریسنٹلی آئی ہے، آپ کو پتا ہی ہے کہ سویڈن نے مطلب لاک ڈاؤن نہیں کیا، تو ابھی جو ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ میں جو تقریباً 2-3 دن پہلے ہم پرائم منسٹر سٹیفن لووین کا بھی میسج آیا تھا کہ اس وقت کرونا جو ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے سویڈن میں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مطلب ہے کہا ہے کہ ڈفرینٹ طریقے یعنی ہم نے جو اپنائے تھے اس کو مطلب ہے شکست دینے کے لیے، وہ ہمیں اس کے ریزلٹ آنا شروع ہو گئے، لیکن ابھی بھی یعنی ابھی تک کوئی اس طرح خاص کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، ابھی تک موجود ہے، لیکن آپ مطلب کوشش کریں اور اس کو مطلب ابھی تک سوشل ڈسٹینس کو بھی آپ بالکل اس کو کیپ کنٹینیو رکھیں، اور کوشش کریں کہ مطلب اس سے ہاتھ دھوئیں، اور مطلب اگر کوئی بھی آپ کو سمٹم ہو، کھانسی بخار نزلہ یا کوئی سر میں درد یا کسی قسم کا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو کائنڈلی گھر پہ رہیں۔ اور پھر انہوں نے یعنی ڈفرینٹ ایپس بھی بنا دی ہیں اور ٹیلی فون نمبر بھی رکھ دیے ہیں، میں آپ کی توسط سے بھی یہ یعنی یہ کروں گا کہ 1177 یہ ایک اسپیشل نمبر ہے کہ اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سچویشن ہو بہت زیادہ آپ کی یعنی زندگی کی جو موت کی اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن بہت ورس ہو گیا، تو 112 کو بھی آپ کائنڈلی نا کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی یہاں پر 111 جو اور 77 یہ جو نمبر ہے، تو یہاں پر آپ جا کر کائنڈلی مطلب ہے اگر آپ کا ٹیسٹ کروانا ہے COVID-19 کا، تو یہاں پر بھی آپ اپنے فون کر سکتے ہیں، سمٹم کر سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ آپ کا مطلب ہے کارآمد ایک جو COVID-19 کا ٹیسٹ آپ بکنگ کر سکتے ہیں یا ٹائم لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 ایپ بھی اب آ گئے ہیں یہاں پر، جیسے ڈاکٹر ایپ ہے اور ہے KRY ایپ ہے، یعنی یہ ایپ ہے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ڈائریکٹ یعنی آن لائن اپنے ایپ کے تھرو ویڈیو کال اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو ڈاکٹر سے بات چیت کر سکتے ہیں اور وہ مطلب ہے اس سے بالکل مدد لے سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا یہ ہو گیا کہ ہر وقت یعنی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل ٹیکنیک جو ہے کمیونیکیشن ہے یہ بہت زیادہ آج کل عام ہو گئی ہے۔ جی
1: کامران، اس کے علاوہ جو آپ سنایا کہ سویڈن میں جو کرونا وائرس کی جو ریشو ہے وہ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
2: ہاں جی بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ریشو مطلب جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، جو بہت اچھی یعنی ایک کارآمد ہے۔ شروع میں آپ کو پتا ہے کیونکہ اس کی وجہ 2-3 اور بھی آئی ہیں، جو میں نے جو تھوڑا سا میڈیا کو سویڈش میڈیا کو فالو کیا وہ 2-3 بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ خود مطلب پہلے اتنے لوگوں کو، اور دوسری بات ہے لوگوں کو نالج انفارمیشن بھی نہیں تھی، تو یہ لوگوں کو آنا شروع ہو گئی ہے اور لوگ اس کو سیریس لینا شروع ہو گیا۔ پہلے آپ کو پتا ہے کوئی نئی چیز جب آتی ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے، لوگ تھوڑے سے مطلب اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے، تو یہ جگہ جگہ آپ کو پتا ہے کہ جب سوشل ہر جگہ لکھا ہوتا ہے ہر، اور یہ بھی قانون بن گیا کہ کوئی بھی یعنی شاپنگ مال ہو، کوئی یعنی پبلک ایریا ہو، تو وہاں پر ہمیشہ آپ کو بورڈ لگنا چاہیے کہ آپ ڈسٹینس کریں، آپ ہاتھ دھوئیں، آپ جدھر بھی آپ جائیں تو کہ بھئی اب انہوں نے نا وہاں پر سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج کل جو میں نے جو ایک ڈفرینٹ بھی سویڈن میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ابھی یہاں پر اگر آپ پبلک ٹوائلٹس یا پبلک جگہ پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آج کل وہ سینسر لگے ہوئے ہیں ٹونٹی کا، یعنی ہاتھ آپ کو वो टोटी खोलने की जरूरत नहीं होती, हाथ आगे आप करते हैं तो वो पानी आ जाता है। तो डिफरेंट जगहों पे ये चीजें भी बहुत हो गई हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने बसों के अंदर इस वक्त स्पेशली मालमो में, और भी ऐसे ही होगा लेकिन मुझे मालमो का पता है, क्योंकि अब बसों के अंदर भी अब जैसे आप पहले आप टिकट लेते थे तो वो ड्राइविंग ड्राइविंग आपका ड्राइवर आपका टिकट देखता था और फिर आपको आने की इजाजत होती, तो अब आप उस डोर से भी नहीं आ सकते अब, लेकिन अब उन्होंने पीछे लगा दिए तो आप यानी जो पीछे वाला वहां से आप जा सकते हैं उसके अंदर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यानी दो तीन चीजें हैं कि एक चीज ये भी हो गया कि यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो उस भी थोड़ा सा मसला हो गया कि यहाँ पर वो तकरीबन ओवर 200 जो यानी ड्राइवर हैं वो भी जॉब से जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ना अवॉइड करना शुरू कर दिया है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये थोड़ी सी मतलब है एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतने लोग मतलब है पैसे जनरेट नहीं हो रहे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उस बंदे को होगा, आपको पता ही है जिसके पास गाड़ी नहीं है या थोड़ा दूर रहता है, उसने अपनी जॉब पे जाना है या अपना कोई चीजें खरीदने के लिए जाना है या कोई दोस्त के पास जाना है या कोई इस तरह, तो ये चीजें भी यानी थोड़ा सा मसला यहाँ शुरू हो गया। लेकिन अब भी थोड़ी सी यानी हम आपको पता है हम सोशल डेमोक्रेट से मेरा ताल्लुक है, हम हमेशा अगेंस्ट होते हैं कि आप किसी को मतलब है जॉब ना दे। तो एक एक और हमारी पार्टी की तरफ से एक ओपिनियन आई है ये वाली कि आपको पता है कि अभी अगस्त का महीना शुरू हो गया है, अभी 2 अगस्त है आज, तो ये हो गया कि अभी स्कूल शुरू हो जाएंगे, जस्ट कोई 11 को स्कूल शुरू होने हैं या किसी ने यानी इसके वैसे ऐसा स्कूल शुरू होने, तो ये भी मतलब बातचीत हो रही है कि आप स्कूल को मिसाल के तौर पे उनका जो स्कूल का जो स्टार्टिंग टाइम है ओपन जिस तरह जाना है तो दूसरे स्कूलों से यानी आप थोड़ा डिफरेंस कर लें, ताकि बच्चे मिसाल के तौर पे एक स्कूल अगर 8 बजे शुरू होता है तो ये तो सेकेंड जो स्कूल है उसके बच्चे तो आप उसको 8:30 कर दें, यानी बच्चों को भी आप टाइमिंग के थ्रू इसकी छुट्टी मिसाल के तौर पे किसी की छुट्टी 3 बजे होनी है किसी की 4 बजे होनी है तो अगले दिन जो दूसरा स्कूल है वो 9 बजे शुरू कर दे, यानी इस किस्म के यानी ये भी एक एक एक किस्म से एक आइडिया दिया है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किसके मतलब आप डिवाइड कर दें डिफरेंट टाइम से, ताकि आपके जो स्टूडेंट्स भी आए वो एकदम बसें ना भरें। अब आपको पता स्कूल में स्टूडेंट्स मतलब है डिफरेंट स्कूल जो आपको बताया उनको उनके पास वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ी चीप होती है, वो गाड़ी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट यानी आइडियाज है यहाँ पर कि भाई किस तरह से हमें मतलब है क्या करना चाहिए कि भाई कि हम नहीं चाहते कि बस जो ड्राइवर है उनको भी मतलब है जॉब जॉब लेस ना हो और उनको भी रखा जाए लेकिन काम भी चलता जाए, तो अब इसके बारे में भी काम हो रहा है। जी
1: कामरान, आपने बड़ा अच्छा किया तफसील से बताया। तो कामरान, अब जो सियासी हालात, चूंकि आप सियासत से भी आपका तल्लक है, तो सियासी हालात जो है आपकी हुकूमत क्या कुछ कर रही है नई चीजें, या सियासी पार्टियां कोई तब्दीली लाना चाहती हैं, या आपकी पार्टी कोई तब्दीली लाना चाहती है?
2: जी बहुत बहुत अच्छा आपका वो ये क्वेश्चन है। पहली बात जो आपको शुरू शुरू में जब आपको बताया कि जब यहाँ COVID-19 आया तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म स्वीडन को मिला, क्योंकि जो यहाँ की जो आपको पता है डिफरेंट जो अपोजिशन की पार्टीज होती हैं और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि जो वजीर आजम को चला जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। फिर वो कंपेयर करते थे कि डेनमार्क ने लॉकडाउन कर दिया, आपके डेनमार्क ने मतलब है नॉर्वे ने कर दिया, फिनलैंड ने कर दिया, फ्रांस में कर दिया, यूके में हो गया, इटली में हो गया, स्पेन में, यू गो ऑन, अमेरिका तक में हो गया, जर्मनी में, मतलब ये आप अगर देखें फॉलो करें, लेकिन वो कहते हैं कि देखें यहाँ कम हुआ यहाँ पर, तो लेकिन जो स्वीडन ने एक स्टेटस यानी जो जो कहा मतलब है कि आप देखें कि अगर हम वहां पर अगर बंद हुआ है मतलब है डिफरेंट जगहों पे तो वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है वहां पर, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मतलब है इस चीज को हमने लॉकडाउन नहीं करना क्योंकि हमारे पास इतने मतलब है हॉस्पिटल हैं, इतनी हमारे पास जगह है, इतनी बेड है हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी आर्मी यानी डिफरेंट उन्होंने वो भी लगा दिए, खैमे भी यहाँ लगे हैं, टेंट्स भी लगे हैं, तो हम इस चीज को कवर कर सकते हैं, मतलब है ये हम मतलब है हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि एक हॉस्पिटल में 50 बंदों के बेड है, क्रिटाइन उन्होंने बनाया हुआ है, COVID-19 के 50 पेशेंट वो ले सकते हैं, लेकिन वो वहां पर 50 नहीं आ रहे, वहां पर 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो उनको अगर वो ये देखते कि मिसाल तौर पर 50 का बेड है लेकिन उनके पास 100 आ रहे हैं, 200 आ गए, अगली दफा उनके पास 250 आ गए, फिर तो वो मतलब है उस चीज को लॉकडाउन करें क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ओवरफ्लो हो गया, मतलब कोलैप्स हो गया है सिस्टम सारा, फिर तो समझ भी आती है। तो इस वजह से स्वीडन ने मतलब है इस चीजों को भी किया है कि जो मेन जो, और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर मिसाल के तौर पे वो लॉकडाउन करते हैं तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ घर में रहेंगे क्योंकि स्कूल भी लॉकडाउन उन्होंने किया, तो इस वजह से उन्होंने जो डे केयर है वो भी लॉकडाउन नहीं किया। तो जो डॉक्टर्स थे, जो नर्स थे, जो पैरामेडिकल के स्टाफ थे, जो मिसाल के तौर पे एम्बुलेंस चलाते हैं, जो टैक्सी वाले लोग थे, जो जो जो मिसाल के तौर पे जो टैक्स ऑफिस में काम करते हैं, जिनकी जिनकी मतलब है ये जो सिस्टम जो था, ये उन्होंने वो जॉब पे आ रहे थे बकायदा, सिस्टम मुल्क एक ना वो चल रहा था, मतलब हर चीज एक अपने सिस्टम में थी और बकायदा काम कर रही थी। तो उन्होंने इस चीज को भी देखा कि भाई ये भी मतलब है तरीके से हम करें, और फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो COVID-19 है ये बच्चों पे इतना ज्यादा, क्योंकि उनके जो इम्यून डिफेंस सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो स्टैटिस्टिक और इन्होंने अपने एनालाइज किए कि वो बच्चों पे इतना असरअंदाज नहीं हो रहा है कंपेयर टू जो हमारे सीनियर हैं। तो उन्होंने फिर वो उसकी वो बनाई कैटेगरी बनाई कि जो उन्होंने कह दिया कि जो आपके डे केयर हैं ये अपने आराम से स्कूल में जाएं, और जो आपके 9th तक हैं वो भी स्कूल में जाएं, लेकिन जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं ये थोड़े से यानी डिफरेंस होता है, वो घर में बैठ के ऑनलाइन उनकी क्लासेस होंगी। और फिर उन्होंने कहा जो मिसाल के तौर पे जो थोड़े से सीनियर हैं 60+ हैं, जो 70 हैं, यानी वो घर में रहें, और उनको बकायदा यहाँ तक भी दे दिया है कि वो सैनिटाइजर वगैरह वो बिल्कुल वो ले सकते हैं, फ्री ले सकते हैं, ये भी मसला मतलब है आगे। तो ये उन्होंने बकायदा एक हर चीज का एक सिस्टम तरीके से लेके गए हैं, और रोजाना आकर आपको बताया कि मिनिस्टर हो गए, और थिग्नेल आपको बता आजकल बड़ा मशहूर है जो स्वीडन का डॉक्टर है, जो वो आके मतलब है हर रोजाना आके मतलब है हमें वो करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और बताता था कि आज दिन में क्या हालात है, आज दिन में क्या हालात है। तो सबसे ज्यादा जो हालात जो है वो जो खराब है वो है स्टॉकहोम में। तो आज भी आपको मैं जरा मतलब आपको बताता जाऊं कि नॉर्वे में कि बंदे अगर मिसाल के तौर पे आप तो ये इसमें समर आ गया, तो नॉर्वे ने भी अभी तक स्वीडन को फुल मतलब है आप लोगों को नहीं, वो नॉर्वे ने भी स्वीडन वालों में कहा है कि सिर्फ स्कोने के लोग, यानी जो मालमो हो गया, लुंड, हेल्सिंबोरी, ये जो स्कोने के लोग हैं ये सिर्फ नॉर्वे जा सकते हैं, बाकी आपने इसी तरह स्वीडन डेनमार्क ने भी ऐसे ही किया कि स्टॉकहोम के लोग ना आए हमारी तरफ, नॉर्थ स्वीडन के लोग ना आए, यानी वो आए सिर्फ स्कोने के भी कुछ ले आ सकते हैं। फिर वो आ गया था कि एड्रेस कैसे पता लगेगा कि स्कोने में है या ये रहता है बंदा या ये स्टॉकहोम में रहता है या मालमो में रहता है, तो उन्होंने कहा कि टैक्स ऑफिस एक वो लेके आए, कागज लेके आए। लेकिन मुझे वैसे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी डेनमार्क ने भी खोल दिया लेकिन अभी तक भी कंडीशंस हैं कुछ, ये भी मुझे है इंफॉर्मेशन जी।
1: तो कोई मालमो में कोई डेमोंस्ट्रेशन भी हो रही है यहाँ जो है डेमोंस्ट्रेशन कश्मीर के हवाले से, कोई मालमो में भी डेमोंस्ट्रेशन हो रही है?
2: नहीं जी, हम इतने तो नहीं है, लेकिन ना मुझे बिल्कुल हमें ये बात पता है कि 15 अगस्त को हमारे जनाब साजिद राजा साजिद साहब है जो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है और कश्मीरियों के लिए हमेशा उनके हक में बात करते हैं, और माशाल्लाह बड़े मैंने उनको मतलब है वो हमेशा, और वो उनकी बहुत अच्छी एक चीज मैंने उनको देखा कि वो हमें भी साथ मिलाते हैं, मतलब है वो हमें मालमो वालों को स्पेशली जो पाकिस्तानी है उनको भी कहते हैं कि आप भी आए, और हम और मैंने लास्ट टाइम भी देखा था कि इंडियन अम्बेसी के सामने 15 अगस्त को जब उनकी एक इंडिपेंडेंस डे होती है और वो वहां पर जाके उनके सामने एक स्पीच करना, लोगों को जमा करना, एक इनिशिएटिव बनाना और बकायदा वहां पर मतलब है एक प्रोटेस्ट करना, और ये और वो आपको पता है मीडिया में आता है, वहाँ डेनिश मीडिया आपकी इसको वो कवर करती है, न्यूज आते हैं, पाकिस्तानी मीडिया आती है, और स्पेशली जो हमारे यूथ हैं यहाँ पर जो डैनिश पाकिस्तानी है, स्वीडिश पाकिस्तानी है, जो बच्चे हैं उनको भी वो होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या चल रहा है। ये चीज उनके वो यानी जबरदस्त मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा जनाब राजा राजा साजिद साहब को कि उनकी यानी बहुत बड़ी एफर्ट है ये वाली। और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का इशू अब ह्यूमैनिटी का इशू हो गया है, ये अभी कोई इसमें ये नहीं हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। अगर आप कंपेयर करें ना इस इशू को फलस्तीन के इशू से, तो ये कश्मीर का इशू फलस्तीन इशू से बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बस आ जाता है कि फलस्तीन में मस्जिद अक्सा है, वहां रिलीजन का वो है हमारे लिए, बिल्कुल वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कश्मीर में आप देखें एक ज्यादा फलस्तीनी इतने नहीं है, तकरीबन 9 मिलियन लोग हैं जी, वो वहां पर उन्होंने डबल लॉकडाउन किया हुआ है। एक तो लॉकडाउन उन्होंने 5 अगस्त को किया था 2019 में, और दूसरा लॉकडाउन ये COVID-19 की वजह से उनको वो मिल गया। और रोजाना हम टीवी पे देखते हैं कि कितने जो बेचारे हमारे नौजवान हैं, कभी कोई टीचर वहां से उठता है फ्रीडम फाइटर, कोई बेचारा कोई वहां पर कोई कोई यानी स्टूडेंट्स उठता है, कोई मतलब है ये यूथ उठ रही है वहां पर। और वो क्या करते हैं, वो बेचारों उनको शहीद भी कर देते हैं और फिर उनकी लाश उन्हें वापस भी नहीं करते। मैं रिसेंटली जब एक बहुत बड़ी एक पिक्चर कश्मीर से आई थी, जब इस बेचारे के नाना को शहीद किया गया, और वो उस बच्चे को तो समझ नहीं है कि उसे गोली लगी, उसके पेट पे वो बेचारा बैठ जाता है क्योंकि वो बच्चा अपने आप को महसूस यही करता है कि नाना के साथ मैं रहूं, और वो तस्वीर उतरती है। और फिर बाद में एक और हमने सोशल मीडिया पे देखी कि इंडिया वाले फौज उसकी उसके पेट पे पैर रखकर और वो बात कर, कितनी बड़ी एक इंसानियत है। मैं कहता हूँ यहाँ पर किसी आप जानवर को इस तरह मतलब है बाहर निकल के आप उसको इस तरह करें जगह पर, मैं कितने लोग खड़े हो जाएंगे, वो तो फिर भी इंसान है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो 15 अगस्त में इंशाल्लाह हम भी यहाँ से बहुत से मतलब है शुरू करेंगे और कर भी रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं 15 अगस्त को, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी इंशाल्लाह कि जितने भी पाकिस्तानी स्पेशली, और साथ अपने लोकल भी लाएं, यानी कि डैनिश है वो भी साथ लाएं, और अगर स्वीडिश है या कोई भी हो यानी वो भी साथ लाएं और डेमोन्स्ट्रेशन करें। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है 15 अगस्त 9:30 बजे इंडियन एम्बेसी के सामने कोपनहेगन के अंदर, तो वहां पर बिल्कुल भरपूर तरीके से अपनी वो कराएं। और जो है राजा साजिद साहब उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारे बिल्कुल मालमो पाकिस्तानी हम उनके बिल्कुल भरपूर उनके साथ हैं जी।
1: कमरान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा
2: इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत शुक्रिया। सोना है
1: समान, ये थे कामरान कुरैशी जो के मालमो स्वीडन की फजाओं से बात कर रहे थे। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, बड़े काबिल हैं, ये ऑनरेडी मजिस्ट्रेट भी हैं जो कोर्ट में बैठते भी हैं बाकायदगी से जो है। इसके अलावा अपना पेशे के लिहाज से वो इंजीनियर हैं, गैस में काम करते हैं, बड़ा अच्छा है इनका सोशल वर्क भी, बड़ी हिम्मत है इनकी कि इतना टाइम ये निकालते हैं अपनी कम्यूनिटी के लिए, सोशल कामों के लिए। तो यही जज्बा होना चाहिए कि अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए भी, और बाकी भी जो है अपने काम करने चाहिए। समझने हमारे साथ साथ रही, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सामिन, इस वक्त चौधरी शौकत साहब जो कि काफ लीग के सदर हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी साहब, खुश आमदीद।
2: जी बहुत मेहरबानी रहन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक चौधरी साहब, पहले सबसे पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताएं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि मैं तो अब इंशाल्लाह जो है ना पूरी तरह सेहतयाब हो गया हूँ। आपको पता ही है, आपके साथ भी था 2-3 दिन पहले, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत दी है, दोस्तों की बहन भाइयों की दुआओं से, तो अल्लाह पाक का बहुत करम है।
1: चौधरी साहब, आप कोरोना वायरस के हवाले से कोई अपना, जिन लोगों ने इस तरह के इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ, उनको कोई मैसेज देना चाहें आप?
2: हाँ बिल्कुल, ये है कि सबसे पहले एहतियात सबसे बहुत जरूरी है। आप अपना फासला पब्लिक गैदरिंग में बहुत ज्यादा ना जाया करें, कम जाया करें, और जाए भी तो अपना मास्क वगैरह ये इस्तेमाल करें और जो अपना फासला रखें। हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो वैसे मुंह से भी हो जाता है, तो आपको पता है कि ज्यादा कोई पता नहीं होता कि इस भाई को कुछ ये कोई जो है ना क्या कहते हैं कि बीमारी लाग है या नहीं है या जो हो सकती है, तो आप अपनी एहतियात बहुत जरूरी है। जो खासकर बुजुर्ग लोग जो है जिनको ये शक है या कमजोर है या हो सकता है या हो सकती है, या जिनको जैसे मुझे मेरी तरह ऑपरेशन जिन्होंने करवाया है, तो एहतियात करें। सबसे बहुत जरूरी है कि एहतियात, अपनी सेहत को, सेहत का ख्याल रखें, फासला रखें और मिलना जुलना बहुत कम रखें।
1: ये बड़ी अच्छी बात की। चौधरी साहब, चूंकि आप सियासतदान भी हैं, तो एक आध बात सियासत पर भी कर लेते हैं। चौधरी साहब, आप एक अपोजिशन जमात में पहले थे, उसके बाद आप हुकूमत में गए और अब फिर आप अपोजिशन की बातें कर रहे हैं, क्या बात है? ये हुकूमत तब्दील तो नहीं होने जा रही?
2: राज साहब, जहाँ तक मेरी पार्टी का तल्लक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हैं। जैसे कि हमारे लीडरान ने भी हमेशा कहा है कि हम इनका पूरा साथ देंगे, 5 साल पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो कि काम कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होते हैं, तो वो उनकी निशानदेही करना फर्ज बनता है उस पार्टी का, जो उन पे फर्ज भी हो जाता है कि वो हुकूमत को बावर करवाएं कि ये मामला जो है ना गलत सिमत में जा रहे हैं, इसको इस तरीके से आप जो है ना लेके जाएं। तो ये कुछ लोग होते हैं, कुछ अनासर होते हैं जो कि इसका तजिया किसी और तरीके से करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी उनके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है इंशाल्लाह। अभी तक वो जो है ना हम उनके इत्तेहादी हैं और उनका ही साथ देंगे। तो खुद कैसी गलतियां होती हैं, ऐसी जो कोई पॉलिसियां होती हैं जिनको जिनकी निशानदेही करनी बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्टी के लिए भी, जैसे बेशक वो तादी हो जो भी हो, तो उनका बनता है कि जैसे मजहब के इस्लाम के लिहाज से काफी चीजें जो है ना चौधरी परवेज लाई साहब ने निशानदेही की, जो है ना वो उनको उजागर किया, तो ये फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको कहें कि ये मामला जो है ना इस तरीके से जा रहे हैं, जो कि कम्युनिटी के मसाइल हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हैं, हम उनके ऊपर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, हमें उनको हल करना है, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देनी चाहिए। तो ये तो हमारा फर्ज बनता है और इंशाल्लाह हम उनके साथ ही हैं और साथ उनका देंगे।
1: लेकिन आप एक तरफ साथ भी हैं तो दूसरी तरफ आप पर, जो आपकी हुकूमत चौधरी बरादरान पर, जो नायब के जो 20-25 साल पुराने मुकदमा थे दोबारा खुलने जा रहे हैं, तो आप खाली सियासी बयान होता है कि हम हुकूमत के साथ हैं, वैसे आप साथ नहीं है हुकूमत के?
2: नैब के केस जो राज साहब आपको पता है, ये तो अभी तो नहीं है, ये तो पहले के है ना, तो पहले को कितनी दफा हमें क्लियर किया, हमारी पार्टी को नैब ने क्लियर किया, क्लियर चिट भी दे दी साफ, उनका कोई एलिगेशन भी नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर दोबारा ये हो गए। तो ये तो नैब को चाहिए कि अगर जब कुछ केस क्लियर हो जाते हैं तो उनको दोबारा फिर वो अंडर प्रेशर पार्टी को लाना, लोगों को लाना, तो ये तो कोई नामनासिब बात है ना। तो जो अगर नैब के केस है तो इंशाल्लाह हम उनकी फाइट करेंगे, पहले भी हम फाइट की थी, हम इंशाल्लाह हम अब भी फाइट करेंगे, हम अपने मसाइल जो है ना उनको हम जो हमारे केस है वो बिल्कुल इंशाल्लाह हम साफ है, क्लियर है हमारे केस, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चौधरी बरादरान ने हमेशा अदालतों का इकराम किया है, दारों का इकराम किया है, तो इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे।
1: लेकिन जो सब बंदा हुकूमत में होता है तो फिर हुकूमत में ही रहना चाहिए, या कितने पाकिस्तान में इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी हो गया कि हुकूमत के रहते हुए अंदर भी तनकीद कर सकता है बंदा?
2: बिल्कुल राय साहब, ये तो हक इंसान का ना, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं उनका ये हक बनता है, चाहे वो आतादी हो, चाहे वो अपोजिशन हो, जो भी हो, तो जो भी कोई गलत समझती है पार्टी के ये गलत है तो उसकी निशानदेही करना पार्टी का फर्ज बन जाता है, जो कि वो अपने नजरिए के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक समझते हैं कि ये जो मामलात है ये हमारे नजरिए के मुताबिक गलत है, तो चाहे गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो तो उसके निशानदेही करना फर्ज बनता है। तो वो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह परवेज रही साहब हमेशा अच्छे तरीके से, जो शुजा साहब अच्छे तरीके से वो जो है ना उजागर करते हैं उन मसलों को उन मसाइल को।
1: जो सब क्या ये बात मुस्लिम लीग नवाज की और मुस्लिम लीग काफ की ये एक ही अंदर जम होने जा रही है आपकी जमात, और ये मुआहदा हो चुका है कि वजीर आला जो पंजाब होंगे अगर केयर टेकर हुकूमत बनती है तो वजीर आला या तब्दीली आन हाउस तब्दीली होती है बुजदार साहब जाते हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो वजीर आला पंजाब होंगे, आपको कोई अंदर की खबर दें आज?
2: राज साहब जहाँ तक अंदर की बात है वो तो मैं गायब का इलम तो नहीं जानता, लेकिन ये है कि आपको पता ही है कि इतना काबिल परवेज लाई साहब जो इतने काबिल इंसान है उन्होंने अपना वर्क पंजाब में करके दिखाया था अवाम को रिलीफ दी थी, पाकिस्तानी अवाम को जो उनके मसाइल असल मसाइल थे उनको उन्होंने उन पे काम किया था, तो उनका नाम आज तक परवेज लाई साहब का पंजाब में ये नाम आता है कि उनका रिकॉर्ड जो है ना हिस्ट्री में है। तो ये चौधरी परवेज लाई साहब को तो सब ही इत्माद करते हैं, तो लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी उनके साथ कुछ मेरे इलम के मुताबिक तो कोई ऐसा अभी को लाए जो है ना एग्रीमेंट नहीं हुआ ना एक मुआहदा हुआ है ना कोई ऐसी बात हुई है। तो अगर नून वाले चौधरी परवेज लाई साहब पे आप इत्माद करते हैं तो वो समझते हैं कि परवेज लाई साहब उनमें ऐसी काबिलियत है इसके काबिल है तो हम उनका शुक्रगुजार हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो समझते हैं। तो वक्त आने वाला वक्त तो वो उसी वक्त बात कर सकते हैं जब वो आएगा, फिर देखेंगे क्या होगा, अभी तो गवर्नमेंट के साथ हम तादी हैं।
1: तो सब एक हमारा यहाँ अकलौता मेंबर है पार्लियामेंट का मलिक सिकंदर सिद्दीक, और उसके बाद जो है जो हमें खबरें मिल रही हैं डेफिनेट आपके पास भी खबरें होंगी कि अगली दफा बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो अब कम्यून की तरफ लोग लगता है कि ज्यादा तोजो नहीं दे रहे, पार्लियामेंट के कैंडिडेट बनने की तरफ ज्यादा तोजो दे रहे हैं, आप क्या सियासी तजिया आपका क्या है?
2: राय साहब आपने कहा कि ये ज्यादा पार्लियामेंट की तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं, असल में तो हमारे मसाइल पड़े हुए हैं कम्यून लेवल पे, हमारे बच्चों के हमारे जो मामलात है वो उधर से ही जो है ना हमने उनको हल करना है, जो के बच्चे हमारे आजकल जो के स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे आगे आ रहे हैं तो उनमें ज्यादा हमें गवर्नमेंट कमून की तरफ ध्यान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बंदे हमें कमून में लाने चाहिए, हमारे काउंसलर हमारे जो भी ये लोग हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा ये शऊर पैदा करना है हमने लोगों में कि ये कमून के इलेक्शन में हिस्सा ले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो पार्लियामेंट तो जाके कानून बनता है, जब कानून में मेजॉरिटी होगी तो उधर वो भी होगा, तो हमें पार्लियामेंट में भी हिस्सा लेना चाहिए, उसमें भी ज्यादा ज्यादा लोग जितने ज्यादा कानून में होंगे हमारे जितनी ज्यादा नुमाइंदगी पार्लियामेंट में भी होगी, ये पाकिस्तानी जो हमारे जो मसाइल है वो ज्यादा ज्यादा होंगे तो ज्यादा तरीके से मुतहद हो के जो है ना वो मसाइल हल करवाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो किरदार अदा करना चाहिए कानून में भी और पार्लियामेंट में भी, ऐसे ही जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले लोग हमें खुशी होगी।
1: चले आपने बड़ा दिलचस्प बात की और आपने बड़ा अच्छा बात की कि कम्यून में हमारे मसाइल पड़े हुए हैं और ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, बड़ी अच्छी तरफ आपने तो जो मबजूल कराई है। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया
2: जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया राय साहब,
1: इंशाल्लाह रहेगा
2: इंशाल्लाह
1: जी। ओके ये थे चौधरी शौकत साहब जो कि एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की हुकूमती लेवल पर, जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वो अपोजिशन में नहीं है लेकिन साथ ये भी मान गए कि अपोजिशन में, और ये भी मान गए कि हम जमहूरियत पसंद है तो जमहूरियत के साथ चलते हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है और इसी तरह होना चाहिए, और जो है हुकूमत में रहते हुए भी अगर कोई बंदा तनकीद करता है तो उसको दाद देनी चाहिए आज के दौर में अगर पाकिस्तान में कोई तनकीद करता है तो।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
2: तमाइन, हम आपको फ्रांस की फिजाओं में लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ सोशल वर्कर भी हैं, लिखारी भी हैं और बहुत खूबसूरत नात पढ़ती हैं, शायरा भी हैं, कालम निगार भी हैं। मुमताज मलिक साहिबा, हम आपको एक बार फिर कोपेनहेगन की फिजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी अस्सलाम वालेकुम, आपको सब सुनने वालों को और जो भी मेहमान आपके पास हैं सबको मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक।
2: खैर मुबारक जी, आपकी ईद कैसे गुजरी?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो आपको पता ही है यूरोप की ईद तो ज्यादातर घरों में फैमिलीज के साथ ही होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से भी कुछ जो दोस्त इकट्ठे होते हैं दावतें वगैरह वो नहीं था सिलसिला, तो बहुत ही ज्यादा सादगी से थी और खामोशी से सादगी से गुजरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से गुजर गई।
2: मुमताज मलिक साहब, किताबें जो आपने लिखी है उनके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील पढ़ रहा था, तकरीबन पिछले साल आपकी नई जो है किताब आई है मार्केट में?
3: जी, लास्ट ईयर जो 2019 में मेरा पहला नातिया मजमूआ कलाम आया, वैसे तो अभी तक ये टोटली मेरी पांच किताबें आ चुकी हैं, पांचवी की अभी रोनमाई के इंतजार में, ये कोरोना की वजह से हम लोग रुक गए शराब दुनिया, लेकिन ये कि नातिया कलाम जो था वो मेरा पहला था और बड़ा मेरा अल्लाह ताला से मिन्नत और जारी से मांगा हुआ कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी अता थी कि मैं ये मुकम्मल कर सकी। 7 साल की मेहनत है मेरी इस किताब के अंदर, 2012 से लेकर 2019 तक का कलाम मेरा इसके अंदर आपको मिलेगा। उसमें नाते हैं, पहले तो हमदिया एक पार्ट है पूरा, ये नहीं कि एक हमद लगाने के बाद आगे शुरू हो रहा है, वो एक हिस्सा है हमदिया कलाम का। उसके बाद नाते हैं, फिर उसके बाद मनकबत हैं, मनाजात हैं, दुआएं हैं, तकरीबन यानी एक ऐसा पैकेज है जिसमें मिलाद वगैरह के लिए भी अगर कोई खवातीन या जो लोग पढ़ना चाहें या इसको सामने रखना चाहें तो वो भी इसको पूरा इस्तेफादा कर सकते हैं।
2: आखिर में इंशाल्लाह जरूर आपसे नात भी सुनेंगे और इसके बारे में और भी तफसीलन बात करेंगे। मुमताज साहब, आप हमारे सामाइन को बताएं कि चूंकि आज ये हमारा कोरोना वायरस पर प्रोग्राम है, जब से ये शुरू हुआ जो है मुतवातर जो है कोरोना वायरस पर प्रोग्राम करते रहते हैं, हमारी पूरी टीम करती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फ्रांस में जो कोरोना वायरस की वबा फैली थी वो बड़ी शिद्दत से आई थी और लोग घबरा गए थे, डर गए थे लोग, फ्लाइट्स बंद होगी, अब क्या सिचुएशन है?
3: अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने इन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया SOPs को और उसके बाद तब जाकर इस काबिल हुए, जब एक टाइम वो भी था कि जब यानी 1,000-1,500 तक 24 घंटे के अंदर अमवात पहुंच चुकी हुई थी, 1,500 से 2,000 लास्ट जो पीक थी, और उसके बाद जैसे जैसे फिर डाउन होने लगा और लोगों ने भी बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, हुकूमत को बड़ा बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि सलाम है जिसने माली तौर पे भी लोगों की मदद की और जहनी तौर पे भी, जज्बाती तौर पे भी उन लोगों को इस तरह से संभाले रखा कि वो अपना दिल ना छोड़ें, वरना यहाँ पे अक्सर लोग पैनिक होने लगे थे और पैनिक से भी हम बात हुई है यहाँ पर। लेकिन वो 3 महीने की जो स्ट्रगल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और मेरा ख्याल है जितने भी हम लोग जिंदा हैं इस वक्त जिन्होंने ये जमाना देख लिया है और जितनी भी हमारी जिंदगी होगी हमारे लिए ये एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक और दिल दहलाने वाला तजुर्बा रहेगा, और खास तौर पर हमारे बाकी जो यूरोप के ममालिक में इटली के साथ जो इटली में जो सानिहात हुए और जो सिचुएशंस थी ना संभालने वाली, उसके बाद तो फ्रांस वाकई बहुत डर गया था। फ्रांसीसी लोगों के अंदर ये चीज इटली की लाशें देखने के बाद जो हालत थी ना,

0: माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी, बहुत खूब जी। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और ताकत दे और उसमें जो है वो जान पड़े। आखिर में मुमताज़ मलिक साहब, आखिर में आप क्या पैगाम देंगी यहाँ सामाइन, हमारे सामाइन को?
1: कोरोना के हवाले से तो पैगाम ये होगा सब बहन भाइयों के लिए कि ये घरों में रहिए या बाहर निकलिए। आप तो बाहर निकल सकते हैं, जहां नहीं निकल सकते वहां पे SOPs का ख्याल रखें, मास्क का, सैनिटाइजर का इहतमाम करें, एक दूसरे के गले लगने से परहेज करें। बेशक ईद के दिन है, ईद गले मिले बगैर भी हो जाती है, दिल मिलने चाहिए, गले मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीरी बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि सबसे पहले आप घर से बाहर निकलें, हम आपके साथ हैं हक़ खुद इरादियत के लिए। वो लोग जो आपको वरगलाते हैं, जो आपको ये सिखाते हैं कि हम अलग से मुल्क बन के कोई आपको कुछ अलग से ही जन्नत दे देंगे, उनके धोखे में ना आए और अलग से इसको अमरीकी अड्डा बनाने के बजाय कश्मीर को किसी ना किसी एक पाकिस्तान या हिंदुस्तान दोनों में से जहां चाहते हैं वोटिंग राइट के लिए जद्दोजहद करें, इंसानी हकूक के लिए, इंसानी हकूक के लिए जद्दोजहद करें और वहां पे अपने वोटिंग राइट को तस्लीम करवाकर दोनों मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क के साथ अपने इल्हाक को यकीनी बनाएं ताकि आपकी जिंदगियां और इज्जतें बचाई जा सकें। और इसके अलावा जो यहाँ पे हमारी कम्युनिटीज हैं उनसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मुश्तरका तौर पे सारी जो मीटिंग्स करते हैं आप, उसमें आप पाकिस्तानियों के जज्बात का एहतराम किया करें। हम यहाँ पर अपने किसी मकसद के लिए नहीं बोलते, हमें कोई फायदा नहीं है यहाँ पर हम आपके लिए आवाज उठाएं ना उठाएं, हम घरों से ना भी निकले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह कि कश्मीर हमारे दिल का हिस्सा है, हमारे हमारी रूह का हिस्सा है और दूसरा मजहबी नहीं, सिर्फ आप देखें तो इंसानी तौर पे भी एक बहुत बड़ा अलमिया है दुनिया का इस वक्त जो कश्मीर में चल रहा है और हम बतौर इंसान भी उसमें उनकी पूरी पूरी अखलाकी हिमायत करते हैं और उनकी वोटिंग के जरिए उनका फैसला जो है सुनने के मुंतजर हैं ताकि हम 70 साल 72 साल के इन मसाइल से निकल सकें। तो बराए मेहरबानी मुखलिस होकर चलिए और खवातीन बाहर निकलें, आवाज उठाएं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी खवातीन भी आपसे आगे खड़ी हुई आपको मिलेंगी वहां।
0: मुमताज मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे सामाइन के साथ शेयर किया।
1: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा सब दोस्तों का जो भी सुन रहे हैं यहाँ पर। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ, मकसद किसी की दिलाजारी नहीं है, मकसद ये कि जो हमारे अंदर तकलीफ पल रही होती है उनको आप तक पहुँचाना होता है और हमारे लहजे से ज्यादा हमारे अल्फाज पे गौर कीजिए कि हम ये किस हद तक सच है नहीं है। तो बस इसके अलावा ये कि आपकी दुआओं में हमेशा याद रहना चाहती हूँ, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत
0: पाकिस्तान जिंदाबाद,
1: पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।
0: समाइन, ये थी मुमताज मलिक साहिबा जो कि फ्रांस की फिजाओं से अपनी बात कर रही थी, उनकी अब अपने बात सुनी। समाइन, हमारा किसी से मुत्तफिक करना जरूरी नहीं है, अगर उस पर कोई बात करना चाहे तो अदारा आपकी आवाज का जो टाइम है
2: आज़रा FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: पूरे साल हमसे जुदा हो गए हैं, जो इससे पहले जुदा है, अल्लाह ताला उनके उन पे अपनी रहमत करे और उनके मकाम जो है उनको, उनकी कब्र को जो है एक आला मकाम अता कर दे, ताकि वो जन्नतुल फिरदौस की हवाएं ले सके। ये हमारी दुआ है, क्योंकि जब आप मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं, जो आप के साथी हो या ना हो, आप उनके लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है कि फरमाता है अल्लाह ताला कि मैं खुश होता हूँ कि मेरे मेरे बंदे जो हैं वो दूसरों के लिए कितनी चाहत रखते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को सिखलाएं कि इस मौका पर अगर आपका कोई मुसलमान भाई जिससे आपकी ना चाहती है, तो उसके लिए भी दुआ हो कि अल्लाह ताला इस कुर्बानी का मकसद ही यह है कि ये जो कुर्बानी आ रही है, इसका ये मकसद नहीं कि हम शोर शाह करें कि जी मैंने इतने बकरे दे दिए, इतने बैल दे दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए। नहीं, इसका मकसद यही है कि हमें कुर्बानी देनी है कि अगर हमें किसी से नाराजगी हुई है, किसी से हमें जुदाई हुई है, किसी से हम मिले नहीं, तो उससे एक दफा मोहब्बत का इजहार कर ले। अगले पे है कि वो आपको माफ करता या नहीं करता, लेकिन आप अपने ऊपर जो है हकूकुल अरबाद की पकड़, उसमें आपको अफजल होना चाहिए। आपको माफी मांग लेना, दुनिया में माफी मांग लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका दर्स दिया है कि माफी मांगने वाला बहुत बड़ा इंसान है, अल्लाह ताला उसको फौरन माफ करता है। जी राजा साहब,
1: निशा साहब, आप हमेशा ये नसीहत करते रहते हैं, आप मुजीब साहब और भी दूसरे लोग जो है मसले मसाइल लोगों के, ना आपका कोई मसला मसाइल है, ना मुजीब साहब का है, ना कोई हमारा मसला मसाइल है, हम तो कम्युनिटी के लोग हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं। और आप देख रहे साला साल आप इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, मौसम की बात करते हैं, बीमारियों की बात करते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं कि हमारा किसी के साथ मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, तो हम तो ये शाह साहब कहते रहते हैं। जी शाह साहब, आप ज़रा हुकूमत की कह रहे, लोगों ने कहा कि बड़ी बात हुई इस तरफ, किसी से जो है वो हुकूमत नई बनने जा रही है, क्या हुआ, ये सियासतदान हमारे साथ क्या करना चाहते हैं?
0: जी सियासतदान ने, हमने कहा था कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट है और पीडीएम की गवर्नमेंट दोबारा बनने जा रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं, कोई दोष कोई शक नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ये कल क्योंकि छुट्टी का दिन है और यहाँ पिंस एन पिंस डे, आज फर्स्ट पिंस डे है, कल एन पिंस डे होगा और मंगल को या बुध को आप इसी हफ्ते के अंदर जो आने वाला है आप ये देख लेंगे, क्योंकि एसएफ ने भी हां कर दिया है। मॉडरेट जो है लास्ट वीक है वो आगे ही चाहता है कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ और मेरे दो तीन मिनिस्ट्री मुझे मिल जाए, और वो तो आगे ही इस सदा पे है। तो ये अब पीडीएम की गवर्नमेंट जो है ये बनने जा रही है और इसकी हमारी वजीर आजम जो है मेजर फेडरिकसन, वो हर हाल में जो है वो इस हुकूमत की सरबराह बनने जा रही है, और इसमें बहुत जल्द लोगों को ये गवर्नमेंट बनती हुई नजर आएगी। लेकिन हैरानगी इस बात में है कि हम लोग अपने मुल्क की सियासी पार्टियों में अख्तलाफ राय रखते हैं, लेकिन यहाँ आप देखें कि एसएफ और इलिस लिस्टन और दूसरी जो अल्टरनेटिव पार्टी है या रेडिकल वेंसा है, इन्होंने किस चीज पे वोट लिए, और दूसरी तरफ सारी पार्टी जो थी उन्होंने किस चीज पे वोट लिए, और अब आकर वो सारे सियासत में अपने मुल्क को चलाने के लिए उन्होंने एक गिरा बांध लिया और कहा कि जी के हम रेड और ब्लू ब्लॉक की जो वेंसा पॉलिसी है उसको साथ लेके तो हम कट्ठे चलेंगे। वो ब्लू ब्लॉक में से तो आपको पता है कि लार्ज लोके की मॉडरेट जो पार्टी है वो आ रही है, और इसके साथ रेडिकल वेंसा जो है वो दोनों तरफ विकेट के दोनों तरफ खेलती है, वो है तो ब्लू ब्लॉक की पार्टी लेकिन वो सोशल डेमोक्रेट वाला रेड ब्लॉक में भी वो खेल जाती है हुकूमत के लिए। तो अब ये देखें कि ये कौन कौन सी वजारतें, अब इनका सबकी बैठक हाँ में होगी है, सिर्फ ये है कि ये वजारतें अब कौन कौन सी ले रहे हैं, इन वजारतों पे ये दो तीन दिन काम होगा, कौन सी पार्टी जो है वो कौन सी वजारत लेना चाहती है, कौन सी जो है इनकी स्टूड पार्टी होगी जो मसलन उनके मंशूर जो है जो वो पार्टी ने इनके साथ जो हुक्मरान पार्टी है पीडीएम इसके साथ क्या किस किस वादे पे उन्होंने इसको ज्वाइन किया, तो वो वादे जो है वो सोशल डेमोक्रेट ने हाँ कर लिया, और उसके साथ जो गवर्नमेंट में आएंगे लोग जिनके वजीर बनेंगे वो पार्टियां जो है वो भी साइन करेंगी। तो इंशाल्लाह ये ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन का खेल है।

0: और लोगों पे से ये चीज गुजर जाएगी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे पास दो मसले हैं। एक है हमारा इंटीरियर मसला, जिसके अंदर यहाँ पे गुर्बत जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। जिंदगी में आज तक 56 साल के अंदर मैंने कभी 17 करोड़ 20 रुपए का मैंने पेट्रोल नहीं देखा था। अब 17 करोड़ 20 रुपए का पेट्रोल और डीजल जो है वो 18 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये जो डीजल होता था ये कभी 1 करोड़ में मिलता था डेनमार्क में 70s में। तो अब आप ये ना कहें कि ये बढ़ रहा है, बल्कि ये है कि इसके अंदर सियासतदानों ने जो बाहर के प्रॉब्लम्स को देखते रहे हैं, दूसरे ममालिक की प्रॉब्लम्स को देखते रहे हैं, खासकर खसूसी तौर पे हमारी कम्यूनों से पैसे लेके, तो 149 मिलियार्ड करोड़ जो था इन्होंने यूक्रेन को दिया, अपने असले दिए, हर चीज दी, उससे हमारी इकोनॉमिकली जो हमारा इकोनॉमिकली हब था वो खत्म हो गया। अब कम्यूनों के पास इतने पैसे नहीं कि वो बाहर जाके तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो सफाई मुर्गी रखे। आप देखिए कि बाहर जगह पे इतना घास इतना भड़क चुका है, पास जो इलाके हैं उनकी सफाई के लिए इतनी तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि इनके पास कम्यूनों के पास पैसा नहीं है। और पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि इन्होंने जो अपने टैक्स पेयर्स हैं वो तो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, और फिर टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो कम्यूनों को वापस आता है। तो हमारे जो काउंसलर्स हैं या हमारे जो बंदे जो चुने गए हैं, ये उनका काम है कि वो अपनी अपनी कम्यूनों को ऊपर आवाज उठाएं और लोगों के लिए सहूलत मैसर करें। आप ये देखें कि किसी की पेंशन नहीं बढ़ी, 2 साल हो गए, प्राइसेस अप गई हैं, लेकिन इनके बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है, बिजली महंगी हो गई है और आगे जाके होने वाली है, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत की तवज्जो नहीं। लेकिन अब क्योंकि SF और इनिशिएशन और अल्टरनेटिव और रेडिकल वेंट्रा ने ये कहा है कि हम इन चीजों पर तवज्जो देंगे, और देखते हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट आती है क्या ये सर्दियां शुरू होने से पहले इस चीज पे काबू पा लेगी या नहीं पा लेगी, क्या ये दोबारा इलेक्शन की तरफ भागेंगे या इस टूटी फूटी PDF की गवर्नमेंट जो है, अब ये टूटी फूटी तो नहीं रही, इनकी सीटें जो है ये तकरीबन 99-100 के करीब इनकी सीटें हो गई हैं, और ये बड़ी आसानी से, क्योंकि 84 तो ऑलरेडी रेड ब्लॉक के पास थी और 14 सीटें जो हैं ये इनको अपना मिल गई है इसकी तरफ से, लास्ट लुक की मॉडरेट की तरफ से। तो ये अब हमने देखना है कि ये गवर्नमेंट असूली तौर पे क्या करती है। तो राजा साहब ये तो सियासत है, और सबसे बड़ी मुझे खुशी ये हुई है कि मेरे छोटे भाई मुजीब कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया है, और बड़े दिल गुर्दे से उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने SF को ज्वाइन कर लिया, और ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा सुकून है, क्योंकि एक तो वो खुद सियासी एक पाकिस्तानी पार्टी के सदर है, दूसरा उनके बच्चे यहाँ पे हैं और सारा कुछ, और वो जानते हैं कि अगर इस एज में मैंने अपने बच्चों के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन करके और उसमें एक अपना अपना असर रसूख पैदा ना किया, तो फिर मेरे बाने बान और दूसरों की जो फार्मस है वो इस पार्टी में इस मुल्क के अंदर जो है उनका मुस्तकबिल इतना अच्छा नहीं होगा। तो मैं उनको बहुत खुशी से मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने फैसला किया है। SF जो है वो इस वक्त श्रीलैंड के अंदर मजबूत तरीन पार्टी है, और हो सकता है कि आगे से जाके ये यूलैंड के अंदर भी ये अपने कदम जमा ले, और ये पार्टी जो है इनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। तो मैं अपने दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। जी राजीव साहब,
1: शाह साहब, आप चूंकि जमहूरी आदमी हैं, आप जमहूरियत की कदर करते हैं, तो मुजीब साहब को बात छुपाते नहीं हैं, पब्लिक के आदमी हैं, चूंकि वो पब्लिक में बात करते हैं। तो शाह साहब, आपने हुकूमत का जिक्र किया, तो हुकूमत मेरे ख्याल है आप इतने अरसे के बाद इनको दोबारा वजारतें मिलेंगी, कुछ नए लोग वजारतों में आ जाएंगे, लास्ट लूके साहब भी किसी बड़ी अच्छी पोस्टों पर भी जाएंगे, वजारत भी मिलेगी, तो मेरे ख्याल है अब इलेक्शन जो है वक्त पर ही होंगे, अब ये किसी किस्म का पंगा नहीं लेंगे, जो कुछ शरारतें करनी थी, सियासी बातें कर रहा हूँ, वो बातें अब तय हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता।
0: इन्होंने जो गेम प्ले की है कि जो जो बातें करते थे उनको इन्होंने बैठा दिया बाकायदा पार्लियामेंट के स्पीकर नायब स्पीकर जो इनके तीन चार नायब स्पीकर होते हैं उनकी पोजीशनों पे उनको बैठा दिया। मसला ये है कि क्या ये पार्टी जो है ये तवज्जो देगी, क्या मेरे फेडरेशन जो है वो ये साल पूरा एज ए वजीर आजम बैठी रहेगी, या वो इससे पहले ये देखे कि मेरा मुस्तबिल जो है वो ईयू के अंदर है जहां पे इस वक्त यूके जो है इंग्लैंड जो छोड़ चुका था वो बड़ी तेजी के साथ वापस आने की पूरी तमन्ना नहीं बल्कि पूरी को वो कुछ उसके मसाइल हल भी हो गए हैं और कुछ वो परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए दोबारा उसने जो पर खिला रहे हैं तो उनकी जो शरायत है उसके ऊपर वो गामजान है, उसकी बातचीत हो रही है। तो हो सकता है कि एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर जो है जिस तरह के हालात जा रहे हैं, जिस तरह के ग्रीनलैंड के हालात है इस वक्त, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हमने पूरा ग्रीनलैंड ओवरटेक कर लिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट यह कह रही है कि उसने हाफ ऑफ ग्रीनलैंड को हमने उसको इजाजत दी है, लेकिन ये क्या मसले किस वक्त सामने आएंगे, कब मंजरे हम पे आएंगे, ये सियासी चालें कब खत्म होगी और किस तरीके से इसका असर क्या पड़ता है नई आने वाली गवर्नमेंट पे, ये गवर्नमेंट को देखना होगा। लेकिन जो हमारे हमारे लोग हैं, जो हम लोग हैं, मैं आगे अली की भी बात आपके रेडियो पे सुन रहा था, वजीद कुरैशी साहब की भी बातें सुन रहा था, तो बड़ी अच्छी इन्होंने कहा है और ये हम आपके रेडियो पे अमूमन आप मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि आप आगे आए, सिर्फ पुरानी बातें हम इसलिए करते हैं कि आपको ये बताएं कि अगर जो आइन के खिलाफ कानून बनते हैं वो अगर उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट करते हैं, उसके ऊपर आप जाते हैं, तो वो आप आसानी के साथ उनको डिमोलिश करा सकते हैं, उनको वापस कर सकते हैं। ये हमारे आइन की खूबी है, क्योंकि डनमार्क का आइन जो है ये रिटर्न आइन है, इसके ऊपर बेशमार मसाले हैं, बेशमार ऐसे लॉ फौसले थे और फौसले थी जो पेश की गई थी पार्लियामेंट में, जिनको खत्म कर दिया गया वक्त से पहले और जो लागू हुई उनको भी खत्म कर दिया गया। यानी कि आप सबसे पहले ये देखें कि जो हमारे सियासतदान ये कहते हैं कि जी कानून खत्म नहीं होते, देखें यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ के जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसने उबर को बैन किया था कि ये हमारे मुल्क में नहीं आ सकती और हमारा जो कल्चरल हमारी जो कल्चर की अपनी टैक्सीज है जो हम हमारी अरसा दराज 100 साल के करीब इस मुल्क के अंदर चल रही है वही चलेंगी, वही कानून हम रखेंगे, उसको हम थोड़ा सा मॉडराइट कर सकते हैं लेकिन हम उसी को लेके चलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि एक जिस दिन ये अदालत से ये फैसला आया उसके दूसरे दिन ही उबर का जो डायरेक्टर था उसको मिनिस्ट्री में, ट्रैफिक मिनिस्ट्री में उसको जॉब मिल गई और वो डायरेक्टर बन गया। और उसके बाद उसने क्या किया कि वही उबर का कानून, बिल्कुल वही तौर तरीका, वही चीज लगाई और फिर अखबारों में आना शुरू हो गया। और ये रैंडम चीज है मीडिया के अंदर कि उबर ने कहा कि हम 2030 से पहले पहले इस मुल्क में दोबारा कदम जमा लेंगे। तो उसके साथ ड्राइवर आज यहाँ पे जो कंपनी है वो चलती रही, फिर दूसरी चीजें जो है उबर की तरह चलती रही और वो उबर का कानून ऐसा आया कि हमारे लोगों को मौका मिला कि हम लोग जाके इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें, जब हमें प्रोटेस्ट का राइट था राजा साहब उस वक्त हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। तो फिर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उबर उबर का राज का नाव काबू का कानून लागू कर दिया। इससे यह है कि आप एक किस्म के वो जैसे एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी तरह आप एक आर्टिफिशियल वॉलमैन के हैसियत से वॉलमैन ही कर रहे हैं, आप असल में वॉलमैन नहीं, आपको जब भी आपका सेंट्रल चाहे आपको खत्म कर सकता है, आपकी वॉलमैन ही खत्म कर सकता है, आप अनपढ़ है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा 20-25 हजार करोड़ है तो आप यहाँ डरमा के अंदर बड़ा इजीली, आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको 3 साल यहाँ रहते हो गए या 4 साल, सिर्फ आपका एक एड्रेस 1 हफ्ता भी पुराना हो तो आप यहाँ पे फर्म खोल के अपनी टैक्सी चार्ज के बना सकते हैं। और ये कानून जो है ये एक मजाक है, इसके ऊपर हमने बार बार बात की और लोगों ने समझा कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये हम यंगस्टर को समझाना चाहते थे। हम आज भी लोगों को ये कहना चाहते हैं, आज भी लोगों को बताना चाहते हैं कि देखे डेनिश लोग जो है ये राशिस्ट नहीं है, हम खुद राशिस्ट है, क्योंकि हम किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते, हम खुद अपने आप को दूसरों से अफसल समझते हैं, हम यह समझते हैं कि हम हमारे से अच्छा बंदा कोई नहीं, और यही गलतफहमी है जिसकी वजह से इंटरग्रेशन के अंदर जो है वो रखना पड़ा। इंटरग्रेशन के चार पिलर होते हैं, पहला पिलर जो होता है वो होता है कि आपको जस्टिस मिलनी चाहिए, उसका फकदान है इस मुल्क के अंदर। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन, और ये दोनों पहले जो पिलर्स हैं ये इसके ऊपर हमारी गिरफ्त नहीं है। हम लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करते, हम लोगों से इंफॉर्मेशन नहीं लेते, हम लोगों के साथ जाके बात नहीं करते। कल आपने देखा कि कितना अच्छा मेला था यहाँ एल्बर्टसोंग के अंदर, बहुत सारे एम्बेसडर्स आए, 16-17 एम्बेसडर्स यहाँ पे आए, उनके पूरी टीमें आई, आपने उनसे बातें की, हम सब वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बकायदा मेहंदी हाथों पे लगवाई, बहुत कुछ उन्होंने किया। और ये और डेनिश जो पुराना बॉम्बिस्टर था एल्बर्टसोंग का, वो भी सीन, और उसके अलावा जो इस वक्त के जो कंजर्वेटिव का है उसने भी ये तासाद दिए, उसने कहा कि इस तरह की यहाँ पे होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए, और यहाँ पे हमारी कम्युनिटी को, यानी उसका मकसद ये था कि डेनिश कम्युनिटी को भी इन्वाइट होना चाहिए, वो भी आए। और ये मैं आपको बता दूं, मुझे ये याद नहीं कि आज या कल एल्बर्टसोंग के अंदर या नेक्स्ट वीक, मेरा ख्याल में ये नेक्स्ट वीक है, अगर अदनान इसको या कोई और सुन रहा तो वो इसको करेक्ट करेगा, एक फूड फेस्टिवल चल रहा है इसके अंदर एल्बर्टसोंग सेंटर के अंदर, और वहां पे मुख्तलिफ किस्म के फूड स्टॉल वगैरह चलेंगे। ये तो ये बड़ी अच्छी चीज है, हमारे लोगों को भी चाहिए कि सस्ता खाना बनाकर लाए, सस्ती चीजें लगाए, ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे कल्चर को पसंद करें। कोशिश ये करें कि अपने कल्चर के जो कपड़े हैं वो उसको बनाएं। और राजा साहब मैं इस पे बहुत हुआ हूं, और मुझे काफी लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे एक जो डेनिश और पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी बड़ी होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, जो ये चीज राज करे, तो मेरा ख्याल में कि वो
1: सब आपकी बातें दुरुस्त हैं, चूंकि आप जमहूरी बंदे हैं ना, जमहूरी बातें करते हैं। शाह साहब सबसे पहले जो है ना इत्तेफाक होना चाहिए, यहाँ जब पर्सनैलिटी क्लैश शुरू हो जाते हैं, बंदा एक दूसरे को मानता नहीं है, बंदा अपनी अपनी हदों में रहना चाहता है, अपनी सरहदों के सियासी सरहदों के अंदर रहना चाहता है, तो शाह साहब फिर इत्तेफाक नहीं होता। जिस तरह आप देखें ना, आप बात करते हैं पीडीएम की, आज हुकूमत ने आपस में इत्तेफाक कर लिया, तब वजारतें मिलेंगी ना, जब तक आपस में ये सब लोग इत्तेफाक नहीं करते तब तक काम चलता नहीं। आप देखें कभी शाह साहब आपने देखी है डेमोन्स्ट्रेशन के गैर मुल्की अपने हकूक के लिए बाहर निकले हों?
0: इन्होंने इनको पता ही नहीं, इनको इनको इनके पास इतना टाइम नहीं है, और अगर ये निकलते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। मुझे इसमें दो राय नहीं है, मेरी हमदर्दी है, बल्कि मेरा दिल दुखता है जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ गजा में हो रहा है, जो कुछ दूसरे मुसलमान ममालकों में या दुनिया के दूसरे ममालकों में जो जहाँ जंगे लड़ी जा रही है, इंसानियत का कत्ल जो है, ये मुझे मुझे दुख देता है और बहुत ज्यादा दुख देता है। लेकिन मसला ये है कि क्या आज तक कोई ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है कि जिसके अंदर हमने ये कोशिश की हो कि हमें इंटरग्रेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका हल क्या है, या हम लोगों ने खुद कोई ऐसी मीटिंग्स कॉल की है कि हम उसके ऊपर बैठ के मुकर्रों की बात सुनी जाए। हमारे लोगों की, आज भी एक बच्चा मुझसे बात कर रहा था, वो पूछ रहा था, तो मैंने उसको कहा बेटा देखो जब हम जाते हैं इकट्ठे होते हैं तो वहां ऐसे लोगों को स्टेज पे बैठा दिया जाता है जिनको अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, तो वो क्या हिस्ट्री किसी को बताएंगे, वो क्या बताएंगे कि यहाँ क्या, क्योंकि जब आपको जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री लैंड जिस कंट्री मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं उसका आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, उसको जहन शीन नहीं करेंगे, उसके अलावा फिर उनके जो वक्ती जो कानून बने हुए हैं उनके उनके आपको ना पता हो, और इनके आपको डिफरेंट कल्चर, जैसे हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं इनके भी डिफरेंट कल्चर्स हैं, उन कल्चर के लोगों के साथ आपकी मुलाकात होनी चाहिए, उन लोगों से आपको बात करनी चाहिए। अब कल आपने कितना मसरूफ दिन गुजारा, आपका बेटा आपके साथ था, वो कैमरा लेके हर जगह लोगों से बात कर रहा था, मुख्तलिफ एम्बेसडर से बात कर रहे थे, आप ही कर रहे थे, आपने पहले मेयर जो थे यहाँ के सोशल डेमोक्रेट के सीन उससे भी तफसीलन बात की, दूसरों से भी बात की। तो ये चीज होती है जो बंदे को इन्फॉर्म करते हैं और जो वक्त के ऊपर लोगों को बात करते हैं। लेकिन अगर हम लेग पुलिंग पे लगे रहे कि भाई फलाना को और ये देखो इससे फलाने एम्बेसडर के साथ खड़ा हो गया है और ये उससे पता नहीं क्या बात कर रहा, मैं इसके साथ बात करना चाहता हूँ, ये रास्ता दे, तो ये चीजें, ये लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। और ये बिल्कुल आप अपना बात सही करते हैं कि यहाँ पे इस रेडियो की, इस आपकी आवाज के जरिए हमने लोगों में ये उजागर किया कि ये जो हमारे अपने गांव की बिरादरी सिस्टम से हमने लोगों को निकाला, लेकिन अब हमें इन बिरादरी सिस्टम से निकले हुए बच्चों का को ये भी शौर देना है कि ठीक है आप एजुकेटेड हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम मानते हैं, लेकिन सियासत जो है दो तरह की होती है, एक होती है सियासत जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, एक होता है कि आप लॉ को जानते हैं, लॉ को जो जानता है वो होता है पार्लियामेंटेरियन, वो लॉ मेकर्स होते हैं, वो कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनको पता होता है कि कानून के अंदर किस तरह हेरा फेरी की जा सकती है, किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से ये गैर कानूनी चीजें जो है जजों के अदालतों के जो फैसले आए हैं उनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये इंसानियत के खिलाफ जो इन्होंने किए हैं। तो हमारे हमारे हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि हमें यहाँ पे राजा गफूर साहब जो अक्सर बात करते हैं ये प्लाई गेम हो, ये फलानी चीज हो, ये फलानी चीज हो, भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें ज़हनी सुकून होना चाहिए, हमें रूहानी सुकून होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए जैसे हम 70s 80s में 90s में थे इस मुल्क के अंदर, हमें बाहर निकलते हुए खौफ नहीं आना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। आप यकीन कीजिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई इस वक्त बदतमीजी करते हैं, ये डेनिस तो करते हैं, ये तो उनका मुल्क है, लेकिन हम लोग उनसे 10 रती आगे, हम लोग मेरी मेरे 2 या 3 हफ्ते पहले एक बंदे से बात हो रही थी और उससे ये बात हो रही थी कि उसको बैंक जो था वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए उसका अकाउंटी खोल रहा था, तो वो बड़ा गुस्से में था, तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम पहले अपने घर जाओ, उनसे जाके पूछो कि भाई तुम्हारे घर वालों ने क्या किया, या मुझसे पूछो कि हमने क्या किया, हमने लोन लेके हम लोगों ने अपने बिजनेसों को बैंकक्रप्ट किया, हमने पैसे वापस भी किए, तो बैंकों ने हम पे इतबार कैसे करना है। अब क्योंकि मसले इतने बढ़ गए हैं और बैंक चाहते हैं कि भाई अगर आप 1-2 लाख का तो कर रहे हैं फ्रॉड तो कोई बात नहीं, अगर आप टैक्स में और मंथ में ही मिलियंस का फ्रॉड कर रहे हैं तो फिर आपने बैंकों के साथ कितना लोन और कितने फ्रॉड किए हैं। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने इन लोगों को इजाजत दे दिया कि आप जिसको चाहे रखें, अभी भी अच्छे बैंक हैं, अभी भी अच्छे लोग हैं, अभी भी बैंकर्स अच्छे हैं जो आपको ज़ाती तौर पर जानते हैं और वो आपकी पोजीशन को देख लेते हैं कि भाई ये बंदा कैसा, तो अभी भी वो आपकी गुफ्तगू से आपके कारोबार से मुतासर होकर आपको बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो काउंसलर हजरात हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, वो बजाय छुट्टियों पे घूमने फिरने के, उनको ये चाहिए कि कुछ दिन अपनी उस अवाम को भी दे जिस अवाम ने उनको वोट दिया। तो ये चीजें जो है हमारे यंगस्टर्स को सोचना चाहिए कि हमें आजादी किस तरीके से हासिल होगी, आजादी खून बहा से नहीं होती, आजादी जो है आप अपनी अकल से लेते हैं और अकल इस्तेमाल करने के लिए हमारे यंगस्टर्स जो है आज के जमाने में बहुत शौर रखते हैं, सिर्फ ये है कि इस शौर के साथ उनको ताकत मुहैया की जाए, उनके पीछे लोग हों, यानी कि जैसे कि अभी मेरे भाई छोटे भाई एसएफ में जा रहे हैं, इनके साथ अगर 50-60-100 बंदा जो है उनकी गैदरिंग हो और वो एसएफ वालों को पता लगे कि ये बंदा सिर्फ अकेला नहीं आ रहा है, इसके साथ कितने बंदे आ रहे हैं, وہ ایک پاورفل بندے کی حیثیت سے اس میں شامل ہوگا.
1: کیا شاہ صاحب یہ ساری پارٹیاں اسی طرح کی بات چیت کرنے کی آزادی دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں فلان کو نکال دیا, فلاں نے یہ بات نہیں مانی تھی, فلاں نے نکال دیا, جس طرح مول جوکیٹف کی پارٹی میں عیسائی میں کسی بندے نے کوئی بات کی تھی تو اسے پارٹی سے فارغ کر دیا, تو شاہ صاحب کیا یہ لوگ ساری چیزیں سوچ کر جاتے ہیں؟
0: دیکھیں جی, جب آپ کسی پارٹی کے ممبر بنتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو پارٹی کا منشور ہے وہ بتایا نہیں جاتا کہ ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے, ہم اس پہ سختی سے ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں, آپ یہ کریں گے. میں اگر چاہوں تو میں رنسا کا بھی ممبر بن جاؤں, ڈینس فلکے پارٹی کا بن جاؤں. ہاں, ڈینس فلکے پارٹی مجھے یہ کہے گی کہ تم ہے ہی مسلمان, تم میری پارٹی میں کیسے آ سکتے ہو, وہ یہ اعتراض اٹھائیں گے. لیکن میں اگر ان کو کہوں کہ نہیں نہیں میں میرے خیال آپ سے ملتے ہیں تو میں بڑا برا ہوں, تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے اب تم ہماری طرح کے آ جاؤ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے تو اس کا پہلے آپ دیکھیں. ابھی میں نے یہ جو بات کی تھی پہلے سٹارٹ میں سیاست میں کہ یہ جو ایس ایف ہے, جو اپنا انسٹن ہے, الٹرنیٹو ہے, ریڈیکل ونسا ہے, انہوں نے کس بات پہ ووٹ لیے تھے؟ انہوں نے ووٹ لیے تھے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. انہوں نے ووٹ لیے تھے جو یہاں کے مسلمانوں پہ اور فارنرز کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہاں ڈرما کے اندر, ان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. اور ان کو سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ کوپن ہیگن اور ویسٹائن اور دوسرے علاقوں سے ان کو ووٹ ملے اور یہ سامنے آئے. اور ان کو انہوں نے کس کی مخالفت کی؟ انہوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی مخالفت کی, انہوں نے سوشل ڈیموکریٹ کی مخالفت کی, انہوں نے کوپن ہیگن سے سوشل ڈیموکریٹ کو باہر نکالا, ان کی میئرشپ جو ہے وہ چھین لی. تو اب کیا ہے, اسی پارٹی کے ساتھ یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. اب ہوگا کیا, ہوگا کیا, کس طریقے سے انہوں نے کیا, کیا یہ ہماری آوازوں کو جو ہے ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ صرف وہ بات کریں گے جو ان کے اپنے پورے ملک کے لیے اچھی ہے. یہ بات کریں گے کہ ہمارے ڈینشوں کو جو ہے, ہم بھی ڈینش ہیں, ہم یہاں رہتے ہیں, ہمیں میڈیکل کیسے ملے, ہمیں فلانی چیز اسکولوں میں فلانی چیز, یہ چار پانچ چیزیں منظور کر کے تو یہ ان کے ساتھ جوائن کر کے بیٹھ جائیں گے. یہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ لوگوں نے وہ محکمہ جو ہے اپنا اولنگ کا یہ ڈیسپرٹ میں لے گئے ہیں اور پورے ملک میں دوسروں کو یہ سہولت دیا تو کوپن ہیگن اور ویسٹ ہینڈ کے لوگوں کو آپ کیوں نہیں یہ سہولت دے رہے, آپ اس کو واپس لائیں یا ان کی پاور سروس کے ساتھ ان کو ٹلک کر دیا جائے, ان کو سامنا. یہ باتیں نہیں کریں گے, یہ وہ باتیں کریں گے جو ان کے اپنے مفاد کے لیے اور جس کے لیے انہوں نے ہاں کی ہے. تو ہمارے لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے اندر ہم ان کے ممبر بن کر ان کی سوچ کو مدم کر سکتے ہیں, ان کی فوج کو واپس لا سکتے ہیں, جب ان کو پتہ لگے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہماری پرابلمس کیا ہیں, ہمارے آنے والی نسلوں کی پرابلمس کیا ہیں, ہم کس طریقے سے کرائم کو روک سکتے ہیں, ہم کس طریقے سے یہاں پہ انٹرگریٹ ہو سکتے ہیں, جیسے کہ 70s اور 80s اور 90s میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا. یہاں پہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا, لوگوں کی سنی جاتی تھی, لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کیا جاتا تھا, کمیون اتنی پاورفل ہوتی تھی کہ وہاں کا جو ایک سیلس بینڈ ہوتا تھا وہ ایک قسم کا پاور منسٹر ہوتا تھا, وہ جو فیصلہ کر دیتی تھی یا کر دیتا تھا اس کے اوپر بہت کم چیز ہوتی تھی اور بڑے ایمانداری سے وہ آپ کی بات سنتے تھے. لیکن اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے اوپر جو سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. ہم نے اتنی آواز اٹھائی, بلکہ یہ انٹرنیشنل اپنا پورے نیشنل لیول پہ ڈائلاگ میں گئی کہ بھائی یہاں پہ پینے کا پانی صاف نہیں ہوتا, پانی پینے کا پانی سب سے گندا ترین ہے, زہریلا پانی ہے. انہوں نے الیکشن میں پانی کو لے کے چلے اور کہا کہ یہ 35% گندا ترین پانی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ 35 نہیں, یہ 70% گندا پانی ہے اور پروف کر سکتے ہیں, ہر جگہ سے پروف کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہمارے کونسلرز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کینسر پھیل رہا ہے, زیادہ پیسے لگ رہے ہیں, انسان کو صحت کے لیے کیا چیز کرنی چاہیے؟ آپ پارکوں میں چلے جائیں, خون لوت قانون بنا ہوا ہے کہ کتے کو جو ہے اگر وہ کہیں پہ وہ کتا پارٹی کرتا ہے تو اس کو آپ اٹھائے, اس کو نہیں جا کر اپنا سکال بینڈ میں جہاں گندگی پھینکنے کی کوئی ڈبہ آپ کو ملتا ہے اس کے اندر پھینکے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, آپ جائیں स्टंट पे चले जाए वहां पे भी आपको कुत्तों की पार्टी मिलेगी हर जगह। तो कानून जो है ये इसका मजाक जो है ये हमारे अपने बनाए हुए लोगों ने किया है। हम तो अपनी जुबान वाले लोगों को कह सकते हैं ना कि हमने आपको वोट दिया सिर्फ इससे ये वोट दिया कि आप पाकिस्तानी है, लेकिन काश के हमने डेंचो को वोट दिया होता और डेंचो के साथ बैठ के उनको अपनी प्रॉब्लम बताई होती तो वो हमें बेहतर तरीके से हमारे मसाइल को जो है वो सुलझा सकते थे। जी राजेश साहब,
1: शाह साहब आप सारी बातें डेनमार्क की जमहूरियत की कर रहे हैं, तो शाह साहब जिनके लिए आप फाइट करना चाहते हैं वो खुद जमहूरियत पसंद ही नहीं है।
0: जी अल्लाह के फजल से बच्चे जो है ये सारे जमहूरियत पसंद है, जितनी यंग जनरेशन है फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन है ये सारी जमहूरियत पसंद है। जो फर्स्ट जनरेशन जिसमें हम लोग आए हैं हमें इख्तलाफ राय है लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि चंद एक लोगों में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन असल मसला यही है कि क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी कल आप देख रहे हैं मेला के अंदर, आज भी मेला लगा हुआ है ट्रस्ट में, जहां जहां पे भी मेला होगा आप देखेंगे कि हमारी खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है। तो फिर उन्होंने ये सारा एक मीटिंग बनाई और इसके अंदर यह फैसला किया कि बजाय हम लोग अपने पास से या इस चीज को खत्म करें हम जो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं उनसे एक मामूली सी फीस जो है वो ले लें और उसको अब ये नहीं हम कर सकते कि हम लोगों को कहें जी कि ये आप 10 मीटर की जगह ले लें।
2: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
4: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: हजार 10,000 2,000 वोट लिए हैं, आपकी पार्टी ने अगर 2 लाख 1.5 लाख वोट लिए हैं, तो शाह साहब इस खेल में फिर उस पार्टी के वोटर्स को तो नहीं पूछा जाता जो कुछ अभी हो रहा है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाता, उसको उनका उनका हक जो है वो तल्फ किया जाता है। आप देखें, इसलिए तो डैनिश जो है वो रोजाना अपनी पार्टियां बदल रहे हैं। इनको यहाँ पे एक असूली तौर पर डेमोक्रेसी इस चीज को मैं मानता हूँ कि यहाँ पे लोग पार्टी चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को लोटाक्रेसी या लोटा नहीं कहते, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये इनका हक है, अगर इनकी पार्टी में कोई ऐसी काम हो रहा है जिसके ये सोचते हैं कि ये ठीक नहीं, तो वो इसको तब्दील कर लेते हैं पार्टी। और ये जो राइट है ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे मुल्कों में होता है कि हम कहते हैं जी वो फलाना लोटा हो गया जिसने पार्टी छोड़ दी, जी फलाने ने पैसे ले लिए छोड़ दी। लेकिन डेमोक्रेसी यही है कि आप अगर देखते हैं कि आपके अपने भी कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ खड़े हो जाएं और कहें कि ये बात गलत है, और बगैर फसाद के बगैर किसी चीज के आप जो बात करें वो डेमोक्रेसी कहलाती है।
0: पहले सियासत कोपेनहेगन से शुरू होती थी, डेनमार्क की हर चीज कोपेनहेगन में होती थी, अब सियासत का गढ़ जो है अल्बर्सलुंड बनता जा रहा है, आप क्या कहेंगे?
1: ये बिल्कुल आपने सही कहा। अल्बर्सलुंड जो है ये क्योंकि इसके अंदर जो मुख्तलिफ राय पाई जाती है और मुख्तलिफ इसके अंदर जो चीजें हैं, आप देखें कि अल्बर्सलुंड को सबसे बड़ी शोहरत मिली थी जब पिछले साल इसके अंदर जो पिया केस को डेल फल्के पार्टी की एक्स फॉरमैन और जो हमारी एक्स स्पीकर रह चुकी है पार्लियामेंट की, उन्होंने ये कहा था कि ये कम्यून जो है ये अपने लोगों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। और उसकी बात उससे पहले हम लोग इसके आपके रेडियो पे ये बात करते थे और बिल्कुल वो चीजें रिकॉर्ड है, और ये चीज हकीकत है कि ये यहाँ की जो सियासत है एल्बर्सलुंड की, ये वो कहते हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा दिमाग मेरी जुबान मेरी मर्जी, तो यहाँ पे हर कोई जो है वो ये कहता है कि मैं सबसे ज्यादा अकलमंद हूँ और मैं ये जो कह रहा हूँ वो ठीक है, अवाम जाए बाहर में, अवाम को अवाम के साथ क्या मसले
0: तो मसाला है। इसका मतलब है आप वहीं रहते हैं, बैलेंस खत्म हो गया है
1: जी, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ये चीजें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वाज है।
0: तो शाह साहब आपने बड़ी कीमती मालूमात दी हमारे सामान्य नाजरीन को, तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा शाह साहब
1: जी, अल्लाह खैर करे सबकी। ओके राजदूत, खुदा हाफिज़ जी।
0: सामान्य नाजरीन ये थे सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब जो कि अपना तजिया पेश कर रहे थे। सामान्य नाजरीन हमारा किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं अपनी राय देना चाहते हैं तो अदर आपकी आवाज़ का टाइम आपके लिए हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबां डोलती है, शायरी सच बोलती है।

आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।